0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 सितंबर पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर। आसिम मुनीर, डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज, डे 278। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर दिलेर जज जस्टिस राहील कामरान शेख ने इस्तीफा दे दिया और स्कोर हो गया है 7-0। जी हां, 7-0, इसको आपने याद रखना है, आगे चल के आपको बताता हूं। राहील कामरान साहब ने आज जो इस्तीफा दिया है वो वाज़े तौर पर बगावत है उस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री और उनके साथी मिलिट्री जनरल्स ने इम्पोज कर रखा है। ये चौथे जज हैं लाहौर हाई कोर्ट से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जस्टिस शाहिद जमील खान इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी एक दबंग और दलेर जज थे। उसके बाद जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। फिर जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, बड़े दबंग जज थे, उन्होंने भी ये 27वीं तरमीम के बाद, आप यही कह लीजिए कि एक किस्म के एहतजाज के तौर पर उनका इस्तीफा भी सामने आया था। अब बहुत ही दलेर और बहुत ही काबिल जस्टिस मोहम्मद राहील कामरान शेख, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत ही काबिल जज थे, पहले बहुत ही काबिल वकील थे, फिर इन्हें खुद से कहा गया कि आप जज बने ज़रूर, वकालत से इस तरफ लाया गया और फिर इन्हें रिडंडेंट कर दिया गया। इन्हें इस तरह के मुकदमात दिए गए जहां से वो कोई इफेक्टिव जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो देकर जो मौजूदा जर्नलिस्ट की गेम है उसमें कोई रोड़ा नाटक आ सके। लेकिन जितनी देर भी जज रहे, दबंग तरीके से कोशिश करते रहे आवाम के हक में फ़ैसले देने की, इंसानी हकूक और ख़वातीन के हकूक और जो भी मतवसत तबकों के केसेस इनके सामने जाते रहे। हमने यही सुना कि इन्होंने बहुत उमदा तरीके से लोगों को इंसाफ देने का, कम अज़ कम अपने ताई इन्होंने सही की। आज इनका इस्तीफ़ा जो आपके सामने रख रहे हैं, इसमें इन्होंने कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन बता भी दी, क्योंकि स्कोर अब हो गया है 7-0। आप कहेंगे वो कैसे, 4 तो मैंने आपको बता दिए। ये जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा दे चुके हैं पिछले इन्हीं 1-2 सालों के अंदर, इससे पहले याद कीजिए 3 जजेस जो हैं कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इसी सारे मामले के अंदर इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो अगर इन 4 और 3 को मिलाएं तो ये 7 हो जाते हैं। कम अज़ कम जो हायर जुडिशरी के जजेस हैं उनका मुकाबला अगर आप अपने मिलिट्री जनरल्स के साथ करें तो वहाँ से स्कोर है 0 का। तो 7-0 का मुकाबला है, मतलब हमारे मिलिट्री जर्नल्स में से कोई एक ऐसा नहीं जो ये कहे, या हमारी एयरफोर्स में से या नेवी में से, कि ये जो कुछ भी फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री और उनके साथी कर रहे हैं कि हमें काबिल कबूल नहीं है, हम इस्तीफ़ा देते हैं। लेकिन कम अज़ कम हमारी जो हायर या सुपीरियर जुडिशरी है उसमें से 7 लोग अभी तक इस्तीफ़ा दे चुके हैं। हम इन तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये वो पुत्र हैं जो हटाते नहीं बिकते। इनमें से कुछ ने पहले माजी में गलतियां भी की, जैसे आप सबको पता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला हों या जस्टिस मंसूर साहब हों, उन्होंने बड़े दबंग और दलेर फैसले भी किए, लेकिन फिर 90 दिन के इलेक्शन के अंदर आकर उनसे भूल और चूक भी हुई। भारत आखिर पर उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ उस सब चीज़ों का दावा किया। तो एक तरफ सिविलियंस की तरफ से रूल ऑफ लॉ के लिए, आप ये कहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुर्बानी दी गई है, और 7 के करीब जजेस जो हैं वो इस्तीफे देकर घर जा चुके हैं। लेकिन ये मामला शायद तब और भी इफ़ेक्टिव होगा जब ये हर तरफ से लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर इसी तरीके से बोलेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी मिलिट्री के अंदर ऐसी कोई आवाज़ अभी तक सुनने में नहीं आई। आप जो जाहिर है सर्विंग है वो तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी धमकाया हुआ है, उनको भी चुप करवाने के लिए हर किस्म का हरबा जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये पहली खबर थी लाहौर हाई कोर्ट से, एक तरफ से तो अफसोसनाक खबर है क्योंकि आज एक और दबंग जज जो थे उनको अपना ओहदा छोड़कर घर जाना पड़ा, क्योंकि उनसे कानून के मुताबिक जो उनकी ताकत थी वो पहले ही छीनी जा चुकी थी। छुट्टियों के बाद उनका तबादला जो है वो मुल्तान बेंच में किया हुआ था। अब ये ना समझिएगा कि वो मुल्तान बेंच की तरफ की वजह से इस्तीफ़ा दे रहे थे, क्योंकि ये तो मामूल की बात है, जजेस मुल्तान बेंच भी, बहावलपुर बेंच भी, जाते रहते हैं और फिर प्रिंसिपल सीट पर भी वापस आते रहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई, अब अगली खबर माजिद निज़ामी। वो कहते हैं कि वक्त आ पहुंचा फौज में अहम तकर्रियों का, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल से ये तकर्रियाँ फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने रोक रखी है। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि इदारा है, इदारों में ये काम नहीं होते जो फील्ड मार्शल ने किए हैं। इदारों में चीज़ें नज्म व ज़ब्त और एक तरतीब से चलती हैं। जहाँ तरतीब ना हो, जहाँ कोई भी अकाउंटेबिलिटी का, प्रमोशन का या किसी भी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार ना हो, वाज़े तरीक़ाकार ना हो, फर्दे वाहद की हुकूमत हो, उसको इदारा नहीं कहते। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, जो अपने आप को इदारे में काम करने वाले कहते हैं, वो अपनी गलत फहमी की तस्दीक करने कि आप एक फर्दे वाहद के नीचे काम कर रहे हैं, किसी इदारे में काम नहीं कर रहे। फर्दे वाहद जो डिसाइड करेगा उस इदारे का वही कानून है, वही इंसाफ है। बहर माजिद निज़ामी कहते हैं कि 10 के करीब लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो अपॉइंट किए जाने हैं आने वाले दिनों के अंदर। ये जाहिर है अब ये मौका आन पहुंचा है, क्योंकि अगले महीने कोई इतने ही आप कह लीजिए, ये शायद इससे भी ज़्यादा, अब जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनकी रिटायरमेंट एक्सटेंशन के बाद दोबारा उनकी रिटायरमेंट जो है वो हो रही है। कईयों को एक्सटेंशन मिली हुई है और कईयों की रिटायरमेंट हो रही है और वो घरों को जा रहे हैं। अब क्योंकि जो नई आइनी तरमीम करवाई है, आइनी तरमीम तो उसे आप नहीं कहेंगे, लेकिन जो असम्बली से नई तरमीम करवाई है, उस तरमीम के बाद जो CDF है, आपको पता ही है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, उन्होंने अपने नीचे सब कुछ ले लिया है। अब ये जितने भी नए जर्नल्स आ रहे हैं या जो पहले जर्नल्स बैठे हुए हैं, उनमें से किसको एक्सटेंशन देनी है, किसको फारिग करना है, किसको रखना है, ये फैसला भी वही करेंगे। अब सोचा ये जा रहा है कि 2-3 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। एक तो क्या मौजूदा DGISI जो आसिम मलिक हैं, उनकी एक्सटेंशन, वो पहले ही एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, वैसे तो पूरा मुल्क ही एक्सटेंशन पर है, वो भी एक्सटेंशन पर है, तो क्या उनका ये उहदा अब ख़त्म करके उनको घर भेजा जाएगा या एक्सटेंशन पर मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी। फिर वाइस आर्मी चीफ किसको लगाया जाएगा, ये जो वाइस आर्मी चीफ होगा इसका उहदा भी खाली है और फील्ड मार्शल ने अभी तक किसी को नहीं लगाया। फिर जो CGS है वो कौन होगा, वो भी बहुत ही अहम उहदा है फ़ौज के अंदर, उस पर अपॉइंटमेंट किसकी की जाएगी, उसको भी दबा कर रखा हुआ है, क्योंकि जो पहले CGS थे उनको आपको पता है कि 4-स्टार जनरल बना के वो कमांड सेंटर की तरफ या कमांड जो सर्विस थी उसकी तरफ भेज दिया, जहाँ पर एटम बम वगैरह का, लेकिन अब वो उसके आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मुख्तार हैं, बल्कि अब फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर के पास ही वो सारा कंट्रोल भी है। तो अब ये 10 लेफ्टिनेंट जनरल की 4 साल मुद्दत आने वाले हफ्तों में मुकम्मल हो रही है, मतलब वो रिटायर हो रहे हैं और जाहिर है उन्हीं की तकर्रियाँ होंगी। इससे पहले शायद 20 साल पहले ऐसी कोई सूरत हाल थी जब 4 के करीब जनरल की एक ही बार कोई तरक्की वगैरह की गई थी, वरना फौज के अंदर जो निज़ाम है वो चलता रहता है अपने वक्त के ऊपर। ये 4 या शायद नंबर मैं गलत कह रहा हूँ उस टाइम, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पहले फ़ौज में ये सब कुछ देखने में शायद नहीं मिला कि एक ही दफ़ा से इतने सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर हो रहे हों और पीछे से किसी की भी तरक्की ना की हो, सबको रोक के रखा हो, क्योंकि फील्ड मार्शल अपनी बैटिंग कर रहे हैं या अपनी फील्डिंग लगा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के अफसरान को फ़ौज के मुख्तलिफ ओहदों पर लगाकर अपना कब्ज़ा जो है वो लंबा अरसा चलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सिविलियंस को सूबों के नाम पर लड़वाना चाहते हैं, दूसरी चीज़ों में उलझाना चाहते हैं और फ़ौज की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, तकर्रियाँ हैं, उनको दबा के बैठे हैं ताकि वहाँ पर भी अपने इख्तदार को वो मुसल्लत रख सकें। तो ये भी देखना पड़ेगा, साथ साथ वो कहते हैं कि नादरा के जो चेयरमैन हैं उनका उहदा अब किसी को किसको दिया जाता है, इन्हीं के पास रहता है जो मौजूद हैं, या इनको मतलब एक्सटेंशन दी जाती है या कोई नया लाया जाता है। फिर ये भी देखा जाएगा कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अथॉरिटी है और मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनके ऊपर क्या किया जाता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस में अमूमी तौर पर अभी तक तो एक मेजर जनरल जो है वो उसे हेड करता है। देखते हैं कि क्या इस डिपार्टमेंट में भी अब एक लेफ्टिनेंट जनरल को लाया जाता है। तो ये सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में क्लियर हो जाएंगे, जब फील्ड मार्शल रिटायर्ड आसिम मुनीर या तो अपने इन साथियों को जो 10 रिटायर होने जा रहे हैं इन्हें या तो एक्सटेंशन देंगे और या फिर इनकी जगह पर नए लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ जरा सुन लीजिए क्योंकि फौज से रिलेटेड ही खबरें हैं तो वो भी आपको दे दें। गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल के इलाके आज़म बरसक में पाकिस्तानी फौज के क्वाड कॉप्टर की फायरिंग से एक मासूम बच्ची और दो कमसन भाई शदीद ज़ख्मी हुए। आज दो ये जो नन्हे बच्चे थे जो इसमें ज़ख्मी हुए थे वो ज़ख्मों की ताब ना ला सके और वो शहीद हो गए। इनकी नन्ही बहन अभी भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और हॉस्पिटल के अंदर अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही है। तो ये सूरत हाल है। आपको पता है कि इमरान खान वाज़े तौर पर जेल से ही इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि ऐसे हमले, ऐसे ड्रोन क्वाडकॉप्टर हमले जिनसे मासूम सिविलियंस की जाने जाएं, उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ना उन्होंने कभी इस पर बयान दिया, ना उन्होंने FIR दर्ज की और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश है, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में इस तरफ वो नज़र भी नहीं उठा रहे। ऐसे लगता है जैसे उनके सूबे में ये हो ही नहीं रहा, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। BLA अटैक्ड पश्तून ड्राइवर्स, मतलब कि अब BLA जो है वो पहले पंजाबी ड्राइवर्स को सिर्फ अटैक करती थी, अब उन्होंने पश्तून ड्राइवर्स को भी अटैक करना शुरू कर दिया है और ट्रक्स जो हैं उनको आग लगा दी। आप देख सकते हैं सड़कों के ऊपर ट्रकों को रोक के उनको आग लगा दी जाती है और उनके अंदर जितना भी सामान मौजूद होता है ज़ाहिर है जल के खाकसर हो जाता है। उससे जो वहाँ का लोकल ट्रेड है, बिजनेस है, आप उसके बारे में खुद ही सोच सकते हैं। ये चागी बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, वहाँ पर वो चेकिंग करते रहे हैं ट्रक्स की, ड्राइवर्स की आइडेंटिटी कन्फर्म करके अब पश्तून ड्राइवर्स को भी निशाना बना रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में हमारे पास एक वीडियो है जिसमें एक पंजाबी ड्राइवर जो है वो बलूचिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ से दूसरे पंजाबी ड्राइवर को ये मैसेज दे रहा है कि खुदा का वास्ता इस तरफ मत आना, यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। क्या मैसेज है पंजाबी ड्राइवर का, सुनिए।
2: अस्सलाम वालेकुम सब ड्राइवरों को, मेरे तरफ सलाम हो गया भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? उम्मीद करता सारे भाई खैरियत नाल हो। तो भाई जान मैं जी इस टाइम बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, इंतहा के हालात ख़राब हैं। मैं सब ड्राइवरों को गुजारिश करी हाँ, जितने भी मेरे पंजाबी भाई हैं, जितने भी मेरे पंजाबी भाई हैं, कोई चाहे मुद्दे वाला है, चाहे कोई शाहजोर वाला है, चाहे कोई बैडपोर्ट वाला है, चाहे कोई FP वाला है, चाहे कोई सैंपल वाला है, सब जगह गुजारिश करे सा कम अज़ कम अपना नहीं, अपने बच्चों का दिफा करो, अपने बच्चों का ख्याल करो, अपने माँ बाप का, अपने भैन भाइयों का। जिंदगी इंसान एक दफा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अभी तो फंस गए मेरे भाई आगे, अभी कोशिश करें निकलने की, अल्लाह खैर करे।
1: सुन लिया आपने, तो ये सूरत हाल है। एक तरफ फील्ड मार्शल जो है वो अपनी बसात लगा रहे हैं, एक तरफ वो पूरी दुनिया के मसले ख़त्म करवा रहे हैं और दूसरी तरफ BLA ट्रकों को जला रही है, हमारे बच्चे क्वाड कॉप्टर के हमलों से मारे जा रहे हैं और ड्राइवर मैसेज दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता है इस तरफ कोई मत आए। आगे आपके सामने एक एक्सक्लूसिव खबर रखते थे, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है जो आपको शायद कहीं और से नहीं मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव खबर ये है कि जो DG ISPR हैं उनकी नई एक उनको असाइनमेंट दी गई है और वो असाइनमेंट ये दी गई है कि अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। हैरान होंगे वो कैसे। अमूमी तौर पर जो फेडरल कैबिनेट होती है वफाकी काबीना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करती है। DG ISPR जो होते हैं वो हर वज़ीर के मातहत बनते हैं। जो फेडरल कैबिनेट का वज़ीर होता है ओहदे के हिसाब से वो डायरेक्टली उसके रिपोर्टिंग में तो वो नहीं आते, हर वज़ीर के वज़ीर दिफा की रिपोर्टिंग में तो वो आएंगे, लेकिन फेडरल कैबिनेट के हर वज़ीर और मशीर से वो ओहदे के हिसाब से नीचे होते हैं। लेकिन अब ये तमाम वज़ीर जो हैं वो DG ISPR को रिपोर्ट करेंगे। आप यही समझ लीजिए कि एक किस्म का DG ISPR को अब वज़ीर आज़म ही लगा दिया गया है। ये बहुत ही मुसद्दका खबर हम आपको दे रहे हैं कि नई स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसमें DG ISPR को रिपोर्ट करेंगे या DG ISPR के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखेंगे तमाम के तमाम मिनिस्टर, और उसके लिए एक कम्युनिकेशन का मजबूत सिस्टम बनाया गया है। उस कम्युनिकेशन के सिस्टम को कंट्रोल करेंगे DG ISPR। तमाम जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स या एडवाइज़र्स हैं उन सबको वो कम्युनिकेशन जाएगी हर रोज़, और ये देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि सूबों के मामलात हों या फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके ऊपर कौन कौन सा वज़ीर जो है वो बयान देता है। और जो भी उस पर बयान देता है उसको शेयर किया जाएगा उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ताकि बाकी तमाम वजीरों को पता चले कि ये इस शख्स ने बयान दिया है तो मुझे भी अब देना, या किस किस ने दिया। तो जो देंगे बयान उनको शाबाशें दी जाएगी, उनको शाबाश कहा जाएगा, और जो नहीं देंगे बयान उनकी जाहिर है एक किस्म की सरजनिश भी है और खामोश पैगाम भी है कि आप अगर ये पैगाम नहीं देंगे तो हम आपको देख भी रहे हैं और गिन भी रहे हैं। ये जो नया कम्युनिकेशन का सिस्टम जनरेट किया है डी जी आई पी आर साहब ने, गालिबन इसके बाद ही जो एहसन इकबाल हैं उन बेचारों ने भी कल सूबों के हक में बयान दिया है। और आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात बता दें कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एहसन इकबाल का ये बयान शेयर भी किया गया, और उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल और दूसरे जो वजीर हैं उनके बयान भी वहाँ पर बताए गए कि ये देखिए ये कितने अच्छे बच्चे हैं कि इन्होंने वैसे बयान दिए हैं जैसे बयान फील्ड मार्शल साहब चाहते हैं। तो अब डी जी साहब को मॉनिटर लगा दिया गया है, आप ये कहें कि खड़पैंच लगा दिया गया है, आपको ये तो पता ही है कि डी जी साहब जो है वो 58 को 58 कहते हैं। तो अब डी जी साहब को कोई एक 58 नंबरी वहाँ पर आप ये कहिए कि उन्होंने मॉनिटर लगा दिया है पूरी की पूरी फेडरल कैबिनेट के ऊपर, और वो पूरी कैबिनेट पर नज़र रखेंगे, और जैसे आपको पता है कि मदारी जो है वो तमाशा करवाता है तो कैबिनेट पूरी बंदर होगी, डी जी साहब के हाथ में डंडा होगा और वो मदारी होंगे और वो बंदर को वैसे नचाएंगे जैसा उनका दिल करेगा। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास जो स्टोरी है ये हमने एक से ज़्यादा सोर्स से कंफर्म करके हम पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने रख रहे हैं। आगे चलते हैं। लंदन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बादशाह साहब ने बुलाया, बादशाह चार्ल्स ने, किंग चार्ल्स ने अपने यहाँ उन्हें एक दावत पर बुलाया, खाने पर बुलाया। वहाँ पर टीम जब जानी थी तो उसके नंबर शंबर गिने गए तो टीम के नंबर कम थे। अब उससे ये लगा कि यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स हैं हमारे जर्नल्स और उनके लगाए गए जो डाउट हैं वो काम डालने के बाद सोचते हैं। आपको याद होगा कि दो ही दिन पहले 7 प्लेयर्स को निकाल दिया गया था टीम से, और उनके साथ हेड कोच को और बॉलिंग कोच को भी निकाल दिया गया था। लेकिन फिर क्या किया गया, फिर टेलीग्राफ ये कह रहा है, ये टेलीग्राफ की स्टोरी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ये लगा कि हो सकता है, ये जाहिर है अभी स्टोरी डेवलपिंग है, हम इसे हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया के अंदर सोशल मीडिया पर टेलीग्राफ पर वो आपके सामने रख रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि जिनको निकाला गया था उन सबको ये कहा गया कि अब वापस आ जाए, आप कम अज़ कम ये खाना अटेंड कर लें बादशाह चार्ल्स का, उसके बाद आपको टीम से तो निकाल ही दिया लेकिन जाते जाते ये खाना अटेंड कर लें ताकि नंबर ज़रा बड़ा हो जाए, भरी भरी टीम लगे, क्योंकि उन्हें ये शक थी कि कहीं ये ना हो कि थोड़े से प्लेयर लगें और हमारी बेइज्जती हो, क्योंकि शायद नए प्लेयर्स अभी लंदन पहुँचे नहीं होंगे। तो जिन लोगों को निकाला गया था उनमें से फिर मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मोहम्मद अवैस और खुर्रम शहजाद को निकाला गया था। इनमें से फिर अली उस्मान, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अवैस जफर ने इस खाने में शिरकत की, और दो तीन दूसरे जो लोग थे उन्होंने शिरकत नहीं की, और उनमें से एक प्लेयर ने ये भी कहा एहतजाजन कि मैं शिरकत नहीं करूँगा, आपने जिस तरह से जिस बेइज्जती के साथ हमें टीम से अलग किया। तो ये एक अलग ही वहाँ पर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बनी, लेकिन साथ ही साथ ये तो नई सूरत हाल तो नहीं है, ये पाक सरजमीन का अब हार्ट स्टेट जो आसिम मुनीर की है उसका यही इंतज़ाम है कि पहले खिलाड़ियों को निकाल दो फिर उन्हें वापस बुला लो कि खाना अटेंड कर लो, निकाला तो तुम्हें हुआ ही है, पहले चीनी जो है वो मुल्क से एक्सपोर्ट कर दो फिर उसे इम्पोर्ट कर दो, फिर जो इम्पोर्ट किया उसे वापस फिर एक्सपोर्ट कर दो। तो ये नया काम नहीं है। इसी तरीके से आपने ये भी देखा कि CBF जो है चेयरमैन कह लें उन्हें, चीफ कह लें ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो साहब जो हैं उन्होंने सूबे बनाने हैं सिविलियंस के लिए, क्योंकि यूनिट्स को छोटा करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, लेकिन मिलिट्री सारी सेंट्रलाइज करनी है, एयरफोर्स भी नीचे लेनी है, नेवी भी नीचे लेनी है, आर्मी भी नीचे लेनी, वहाँ सब कुछ बड़ा करना है, वहाँ यूनिट बड़ा करना है, वहाँ सब कुछ सेंट्रलाइज करना है, लेकिन सिविलियंस के लिए जो इंतजाम हैं वहाँ डिसेंट्रलाइज करना है। और मुनाफ़त देखिए, अभी बलूचिस्तान के माहिदीन से बात करते हुए कह रहे थे कि पॉलिटिशियन को कम अज़ कम जमहूरियत में सियासत में 50% वोट लेने चाहिए जीतने के लिए, वहाँ पर कवानीन याद हैं, खुद ना ही पीएमए से तो ये नहीं है, ओटीएस से ना ही अपने ओटीएस का हल्फ याद है, ना ही पीएमए का हल्फ याद है, और ना ही अपनी रिटायरमेंट याद है, खुद अपने ऊपर कोई कानून नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिशियंस को कहते हैं कि आपने 50% वोट कम अज़ कम लेकर आने हैं तो फिर आपने आगे बढ़ना है, वरना आप जो है जो भी करेंगे वो गलत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो इमरान खान के बेटों के इंटरव्यूज़ हैं जो धड़ाधड़ अब आ रहे हैं। टाइम्स रेडियो ने उनका लेटेस्ट इंटरव्यू किया है जिसमें कासिम खान और सुलेमान खान ने बहुत खुल के बातें की। उन्होंने कहा है कि हमारे वालिद को 6x8 के एक सेल में रखा गया है, वहाँ कम रोशनी है, उनको किताबें भी नहीं दी जाती, और हमारे वालिद को 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा सेल से बाहर निकाला जाता है। जेल में बहुत से लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, हमारे वालिद के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि कल को ये बहाना किया जाए कि वो कुदरती मौत मर गए। मतलब उन्हें इतना तंग किया जा रहा है, उनके इर्द गिर्द माहौल इतना आप ये कह दीजिए कि टफ बना दिया गया है, या उनके जो हालात हैं मामूलात ज़िंदगी हैं उन पर इतनी सख्ती है कि चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वो बीमार हो जाएं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि जब हमारी फुफ्फो

और हमारे वालिद को आइसोलेशन में रखा हुआ है, खुल के उन्होंने बातें की हैं। इसके साथ ही साथ द टाइम्स और संडे टाइम्स ने बहुत ही एक तगड़ा एडिटोरियल जो है वो इमरान खान साहब की जो प्रोसिक्यूशन हो रही है उस पर लिखा। उन्होंने खुले अंदाज में, खबर नहीं है, एडिटोरियल है, जिसका मतलब है कि जो उनका एडिटोरियल बोर्ड है वो अब ये समझता है कि इमरान खान को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, इमरान खान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके इंसानी हकूक जो है उनको सल्ब किया जा रहा है। आगे चलते हैं, अगली खबर ये है कि अमीर, साबिक अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने जो सबको पहले से पता था उसके ऊपर से एक दफ़ा फिर पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को कहा था कि इमरान खान की हुकूमत ना गिराए, लेकिन शहबाज शरीफ ने आगे से कहा कि इमरान खान को लोग भूल जाएंगे, ये थोड़ी देर होगी और आप देखेंगे इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा की सपोर्ट हासिल थी। जनरल बाजवा ने अराकीन असम्बली को फ़ोन कर कर के वोट देने का खुद कहा, लेकिन जनरल बाजवा इस कदर गलीज और झूठे थे, हैं अभी भी, कि वो मुंह पर मुकर जाते थे कि मैं ये काम कर रहा। मैंने आपको एक अहवाल बताया था कि एक मीटिंग में उन्होंने कलमे की कस्में खाई, कुरान उठाया, जबकि हम सभी को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। ना वो अपनी यूनिफॉर्म का ख्याल करते थे, ना अपने ओहदे का ख्याल करते थे, बस झूठ बोलते थे कि बगैर सोचे बोलते। आप याद कीजिए कि बेगम के साथ फ्रांस में बैठे थे, एक शख्स ने आके उन्हें गंदी गालियाँ दी और वो मुकर गए कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। बस यही करते थे, हर चीज़ में मुकर जाते थे। इससे पहले मौलाना फजल रहमान उनका ये सारा, उनको आईना दिखा चुके या उनका ये सारी की सारी जो गेम थी उसके ऊपर से पर्दा उठा चुके होंगे कि उन्होंने किस कदर ये गंदा किरदार अदा किया था। अब साबिक अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब जो है, उन्होंने भी खुलकर बता दिया कि जनरल बाजवा खुद फ़ोन करके डिफरेंट MNAs को जो है या मेंबर पार्लियामेंट को उन्होंने जाहिर है धमकाया होगा या ख़रीदा होगा कि आप वोट दें इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत को गिराएं। उसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, जिसने मुझे हैरान कर दिया है। और हैरान इसलिए किया है कि अब पंजाब असम्बली की जो अपनी कायमा या इस्तेहकाक कमेटी है पंजाब असम्बली के अंदर, वो आजकल ब्रॉडकास्ट करते हैं अपनी कार्रवाई को और डिफरेंट सरकारी अफसरान को बुलाते हैं। सरकारी अफसरान खुल कर आके वहाँ पर कहते हैं कि किस तरीके से करप्शन है। हाल ही में आपको ये बताएं कि जो CCD के हेड हैं इस वक्त, उनको और जो इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हाल ही में सरकारी अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सुहेल जफर चट्ठा जो CCD को भी हेड करते हैं और एंटी करप्शन को भी हेड करते हैं पंजाब में, वो थे, और उसके साथ साथ इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी जाहिर जमान। जाहिर जमान साहब ने ये कहा सरकारी अफसरान को कि पहले तो मैंने एंटी करप्शन को रोक रखा था, मैं दरमियान में था, मैं कार्रवाई नहीं करने देता था, लेकिन अब लोग खुलेआम करप्शन कर रहे हैं, खुलेआम लोग रिश्वत लेने और देने की बातें कर रहे हैं, इसलिए अब चीफ मिनिस्टर ने यह फैसला किया है कि एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जो है वो भरपूर कार्रवाई करेगा और मेरी इजाज़त के बगैर भी अब वो कार्रवाई कर सकेंगे। मतलब ये कि चीफ सेक्रेटरी का पता काट दिया गया है बीच में से, सुहेल जफर चट्ठा को डायरेक्ट हक दे दिया है या इख्तियारात दे दिए हैं मरियम नवाज ने कि वो डायरेक्ट कार्रवाई करें। अब करप्शन तो आपको पता है शरीफ खानदान का कौमी खेल है, करप्शन पे उन्हें मामला नहीं है। जो मौजूदा जाहिर जमान है उनके बारे में ये ओपिनियन है कि वो मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से लगाए गए हैं, इसलिए मरियम नवाज जो हैं वो उनको तो तब्दील नहीं कर सकी अभी तक, इसलिए वो अपना एक छोटा सा चीफ सेक्रेटरी अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं। जो सुहेल जफर चट्ठा है उन्होंने उन्हें चीफ सेक्रेटरी से बाला ही बाला जाकर एक ब्रीफिंग दी और अपने लिए मामला वहाँ से अप्रूव करवा लिए, और अब वो डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी की इजाज़त के बगैर काम करेंगे। एंटी करप्शन का जो मामला होगा वो अफसरान पर डायरेक्ट केसेस बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, एक हेयरिंग हुई इस्तेहकाक कमेटी जहाँ पर PTI के गालिबन ये MPA हैं, फरुख जावेद मून, ये हमारे दोस्त जो हैं, ये अक्सर बेचारे इनकी किस्मत ख़राब है, जब भी कभी एहतजाज हो सबसे पहले ये पड़े जाते हैं, पता नहीं इनके साथ क्या होता है, ये घर से निकलते हैं पुलिस पकड़ लेती है, मतलब सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में PTI का जो भी बंदा पकड़ा जाता है उनमें पहले नामों में ये हमारे दोस्त जो फरुख जावेद मून साहब हैं, इनका नाम इसलिए मुझे याद रह जाता है कि इनके नाम के साथ माँ बाप ने मून लगाया हुआ है, चांद है

0: मामा के हैं भी चांद जैसे वैसे हमारे भाई, लेकिन पुलिस वाले सबसे पहले इन्हें धर लेते। अभी ये इस्तेहकाक कमेटी में गए और इन्होंने कहा कि एक्साइज के एक डिप्टी डायरेक्टर नदीम, ये उनके पास एक फलाही काम के लिए गए, जो आवाम के लिए फलाही काम था, पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में कोई काम था, रफाई काम होगा या रफाई आमा का काम होगा, वो करवाने के लिए गए और उन्होंने इनसे रिश्वत मांगी। और रिश्वत में उन्होंने कहा कि मैं तो खुद यहाँ रिश्वत दे के बैठा हुआ हूँ, आप रिश्वत देंगे तो काम करूँगा वरना मैं काम नहीं करूँगा। ये डिप्टी डायरेक्टर नदीम जो एक्साइज के हैं, उन्होंने कहा। और ये कौन कह रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA फरख जावेद मून कह रहे हैं। आगे से वो जो नदीम साहब हैं वो भी टकरा गए उनसे। उन्होंने कहा कि आप तो आए थे DVRS का लाइसेंस मेरे से रिन्यू करवाने, आप पहले तो मुझे बताएं कि ये कौन सा रफाए आमा का काम है, ये DVRS क्या होता है। ये DVRS जितने भी ये ऑटोमोबाइल्स के डीलर्स होते हैं, ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ बेचने वाले जो डीलर्स हैं, इनका लाइसेंस होता है, डीलर्स का अपना लाइसेंस, ताकि वो एक्साइज के बहुत सारे काम अपनी डीलरशिप पर ही कर सकें और बंदे को एक्साइज के दफ्तर ना जाना पड़े। तो वो जो DVRS का लाइसेंस है वो खालिस्तन एक कारोबारी काम है, जाहिर है अवामी फलाह का कोई काम नहीं है। तो जो नदीम साहब हैं वो इनको टकरा गए, उन्होंने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप अवामी फलाह के काम के लिए आए थे, आप पहले ज़रा बताएं ना कि कौन सा अवामी फलाह का काम था। यहाँ पर MPA साहब के पास जवाब नहीं था।
1: और मुफाद आमा के काम पर मुझसे फीस के साथ अजाफी रकम मांगी गई। सर कौन सा मुफाद आमा का काम था, मुझे ज़रा ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये मुझे डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं तो पैसे दे के इधर आया हूँ सीट पे, और चीज़ का मैं हालत दे रहा हूँ कि 50,000 उन्होंने मेरे सामने बंदे को बुलाया जाकर उसको देख के आओ, अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे सीट पे अगले ट्रांसफर कर देंगे।
2: ये अपनी नौयत की एक अलग से प्रिविलेज मोशन है, आज तक नहीं देखा सुना कि इस तरह से किसी अफसर ने बरह रास्त किसी नुमाइंदे से ये बात कही हो कि मैं पैसे दे के यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ और मैंने आगे भत्ता देना है और मैंने आगे वो पैसे भेजने।
0: तो दोनों पार्टीज की जो इंटेग्रिटी की साइड है वो गौर कीजिए कि वो जो अफसर है, जो डिप्टी डायरेक्टर है, वो सीधा कहता है रिश्वत देकर लगा हूँ, मुझे रिश्वत दो। MPA आकर इस्तेहकाक कमेटी में अपना डाल देता है कि इस्तेहकाक कमेटी में आके जब डिप्टी डायरेक्टर अपीयर होता है तो वहाँ भी MPA अपनी जो स्टेटमेंट पढ़ता है उसमें बताता नहीं कि मैं ज़ाती काम से गया था, वो कहते हैं कि मैं रफाए आमा के काम के लिए गया था। तो डिप्टी डायरेक्टर कहता है कि रफाए आमा का फिर काम बताएं कौन सा था, ये नहीं बताते कि DVRS का जो लाइसेंस अपने कारोबार का था या अपने किसी दोस्त के कारोबार का, वो रिन्यू करवाने गए। तो ये हाल चल रहा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा अब सोचिए। इंटेग्रिटी जो इन ऑफिसेस में होनी चाहिए वो नापैद हो चुकी है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नए उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321984, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन। देखो हमारी वेबसाइट है

हमवतन एक संग नए रंग नए उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84। ईमेल रेडियो स्मैक लाइव

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग, नई उम्मीद। तमीन नागरीन, आप रेडियो हम वतन की उर्दू नशियात बराह रास्त रेडियो वस्तु के स्टूडियो से सुन रहे हैं। आज 6 सितंबर इतवार का दिन है और 11:52 हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह करा प्रोग्राम लेके रजा मुस्तफ़ा हाविरा और मेरे साथ स्टूडियो में जनाब आशिक कुरैशी साहब को शुरू करते हैं। हम चंद मिनट जो है वो कुछ इंटरनेशनल खबरें, खासतौर से पाकिस्तान के हवाले से जो खबर है उस पर हम बात करेंगे। बाकी साहब का तजिया लेंगे कि अभी जो हमने कुछ हफ्ते से देख और सुन रहे हैं कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जो है वो दिफाई मुआहदा जो है वो कर रहे हैं, तो उससे जो उसके हवाले से हम जनाब बाशी साहब से जानेंगे कि बाशी साहब ये क्यों ये बनाया जा रहा है, मुआहदा किया जा रहा है, इसका क्या मकसद होगा, इसको किसका फ़ायदा और किसको नुकसान होगा, और पाकिस्तान को ख़ासतौर पे जो है वो इससे जो है वो क्या मिलेगा। तो सामीन नाजरीन, ये मेरे सवाल हैं जनाब बाशी कुरैशी साहब के लिए। बाशी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो थोड़ा सा वक्त दिया इससे पहले कि आपका प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान शुरू होगा 12 बजे, और उसके बाद बाबे सूचे दुनिया फूसा जो है आज पहला प्रोग्राम होगा, उस पर भी हम जो है वो 1 बजे हाजिर होंगे लेंगे वो प्रोग्राम। तो भाई साहब चलते हैं अपने इलाके में, और वहाँ पे जो मुआहदा हुआ है तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का, इसका क्या मकसद है और इससे हमें जो है वो क्या हासिल होगा और ये क्यों बनाया गया?
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजू पर जो है बात करने के लिए मुझे कहा, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ये मुआहदा नहीं था पहले, ना ही कोई पैक्ट था, ये डिफेंस अरेंजमेंट का नाम रखा गया इसको, और उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि तकरीबन 50-60 साल से अरब ममालिक, ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स को जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका प्रोटेक्शन देता रहा है, किसी भी अगर कोई मुल्क या कोई मूवमेंट उस किसी मुल्क पे हमला करे या कोई और प्रॉब्लम पैदा करे तो अमेरिका ने वादा किया हुआ था अरब ममालिक से कि वो उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन जब ईरान पे हमला किया इसराइल और अमेरिका ने, और ईरान ने जो है भरपूर जवाब दिया, तो उसमें बहुत से अरब ममालिक जो है खलीज के जो अरब ममालिक हैं उनको बहुत नुकसान हुआ, और अरब ममालिक ने ये समझा इस बात को कि अमेरिका जो बड़ी बातें करते हैं उसका इंटरेस्ट जो है वो इसराइल को बचाने के लिए है, ना कि अरब ममालिक को बचाने के लिए। तो इस वजह से ये जो मुआहदा है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक ऐसे ही मुआहदा पहले कर लिया था, और जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे और जो अच्छी खासी प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से उस इलाके के जो ममालिक हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस रीजन की सेफ्टी के लिए खुद ही बेड़ा उठाएं और ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जिन पे हमें भरोसा हो। तो उसमें फिर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो मुआहदा था उसमें टर्की शामिल हुआ, और अब आपको एक और बात बताऊं कि शुरू में इजिप्ट भी उस मुआहदे में शामिल होना चाहता था, लेकिन कुछ उनकी जो जियोपॉलिटिकल ज़रूरियात हैं उसके वजह से वो शामिल नहीं हुए। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इजिप्ट गए अभी चंद दिन पहले, वहाँ पे उन्होंने दोबारा इजिप्ट की जो सदर है उनसे बात की, उनको कहा कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने इलाके में अमन के लिए खुद इकट्ठे हों, और ये कोई मुसलमान नेटो नहीं है या कुछ नहीं, ये उस इलाके की हिफाजत के लिए खुद उस मुल्क के ममालिक जो हैं वो बेड़ा उठाएँ, तो उसकी ये ज़रूरत पड़े। यहाँ पे एक बात और कहता चलूँ, कुछ मुबसरीन ये कहते हैं कि ये मुआहदा इसराइल के ख़िलाफ़ है, कुछ मुबसरीन ये कहते हैं कि ये मुआहदा ईरान के ख़िलाफ़ है। मैं ये समझता हूँ और मैं इस बात का कायल हूँ, और इसमें एक इंडियन बस्ते हैं प्रवीण सानी, बहुत खूबसूरत तबसरा करते हैं वो, उनकी फ़ौजी बैकग्राउंड है, और उनका एक थिंक टैंक का फोर्स, जब आप उनकी बात सुनते हैं तो आपकी बात को समझ आती है। कहते हैं ये मुहादा किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मुहादा अपने आप को बिछाने के लिए है। तो इसीलिए अब जब मुहादा हो गया है, अब उस जो ये पहली मीटिंग हुई थी इस्तांबुल में, उसमें इस मुहादे का अरेंजमेंट को चेंज करके अलायंस का नाम रखा गया।
3: बाकी साहब अभी आप कह रहे हैं कि ये अपने आप को बचाने के लिए जो है ये बनाया गया, लेकिन अगर ये हम ईरान के साथ जो अमेरिका इसराइल जो झड़प हुई है इसलिए देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान या जो खौफ था वो सऊदी अरब को आया, तुर्की को था ना पाकिस्तान।
2: नहीं, सऊदी अरब का नहीं है, गल्फ स्टेट को। सऊदी
3: स्टेट तो अपनी जगह पर वो भी इसमें शामिल भी नहीं है, लेकिन जो शामिल है इसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब। तो सऊदी अरब से जो है ईरान ने हमले किए थे, तो मेरे ख्याल में ये दोनों ममालिक जो हैं वो सऊदी अरब को बचाने के लिए जो है ये कर रहे हैं।
2: नहीं नहीं, देखिए ये फिर वही बात, ये मुहादा ये नहीं है कि अगर आपको कोई डंडा मारे तो आप 10 डंडे लेके इसको कर दें। ये मुहादा जो है ये लॉन्ग टर्म मुहादा है, शॉर्ट टर्म मुहादा नहीं है। और इसमें ये जो शिक है कि अगर इन तीनों ममालिक में से किसी पर हमला होगा तो दोनों दूसरे दो ममालिक जो हैं वो उसकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन उसमें एक और ख़ास बात है जिस पर लोगों ने जोर नहीं दिया, वो ये है कि जिस मुल्क पर हमला होता है वो खुद इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है या नहीं। अब मसलन अगर पाकिस्तान पे इंडिया हमला करता है किसी तरीके से, तो पाकिस्तान की इतनी सलाहियत है, कन्वेंशनल सलाहियत है कि वो तुर्की या सऊदी अरेबिया की मदद के बगैर इंडिया को टैकल कर सकता है। इसी तरह तुर्की की भी सलाहियत है। लेकिन अब तीन ममालिक पर अगर आप देखें, सऊदी अरेबिया के पास बेशहा बेतहाशा माली ज़राए हैं, उसके पास अच्छी खासी एयरफोर्स भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी फ़ौज बहुत बड़ी नहीं है। सेकेंडली तुर्की जो है वो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न, उनके पास डिफेंस इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के पास बहुत पेशा वराना फ़ौज है, साथ में जो ये एक जौहरी ताकत है। तो इन तीनों का मिल जाना, मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप बड़े खुश होंगे। आज से 10 साल पहले एक टर्किश टीवी ने मेरा इंटरव्यू किया इसी मसले पर, तो मैंने वहाँ पर ख्वाहिश से इजहार किया कि क्या अच्छा हो कि अगर ईरान, पाकिस्तान और तुर्की मिल के एक मुहादा करें। तो अब ये मुहादा उस तरफ जा रहा है। आप देखिए चंद महीनों के बाद जब बात थोड़ी सी ठंडी होगी तो ईरान भी इसमें शामिल होगा, इजिप्ट भी शामिल होगा, कुवैत ने ऑलरेडी इस चीज़ की हामी भरी है। तो और ममालिक जो है ना उनको ये पता चल गया कि अमेरिका पे आप डिपेंड नहीं करते।
3: अच्छा, मेरा अगला सवाल भी डॉक्टर साहब आपसे यही था कि बाकी ममालिक जो हैं मिडिल ईस्ट के खास तौर पर कतर के ओमान वगैरह जो हैं वो जो हैं इसमें तीन पहली मरतबा जो शामिल हुए, और दूसरा ये कि क्या ये मुसलमान नेटो टाइप की जो चीज़ बन रही है?
2: नहीं नहीं, इसमें ना तो इस्लाम का ताल्लुक है ना क्रिश्चियनिटी का ताल्लुक है। ये देखें, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे लोग जज्बात में आके इस्लाम को हर तरफ जो है ना उसमें डाल देते हैं, और यूरोपियन मीडिया और पॉलिटिशियन और इंडियन मीडिया को ख़ास तौर पे इसको बार बार इस्लामिक नेटवर्क के तौर पे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। ये तीन ममालिक और इसमें दूसरे ममालिक जो हैं उनकी रजामंदी शामिल है। जैसे मैंने भी कहा है, कोई ने भी पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल मुहादा किया है दूसरे ममालिक भी, लेकिन वो जो अरब ममालिक हैं उनका बहुत बड़ा जो पैसा है वो अमेरिकन बैंकों में है और उनके बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए हैं। अगर वो ऐसी कोई हरकत करते हैं तो आपको पता है अमेरिका फौरन पैसे को खरीद कर देता है। तो अरब ममालिक को बड़े एहतियात से चलना पड़ेगा, लेकिन उनको अब ये अच्छे तरह पता चल गया है कि इसराइल के डिज़ाइन जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, उसमें कुछ हिस्सा सऊदी अरेबिया को लेना चाहता है, सीरिया का और ऐसे इलाकों फैलना चाहता है। अब इस मुहादे से एक बहुत बड़ी बात यह हुई है कि इसराइल 10 दफ़ा सोचेगा किसी ममालिक मुल्क पे चढ़ के उसका कब्जा करे।
3: आखिरी सवाल ये भी, अपने पैसों की बात की कि हम हमारे ममालिक जो है वो मुस्लिम मुल्कों में जो है वो पैसे रख देते हैं,
2: नहीं अरब ममालिक हमारे
3: अभी
2: पास।
3: आप रशिया को भी देख लें, उसके भी जो है वो कुछ पैसे जो हैं यूरोप और अमेरिका में,
2: ईरान के पैसे उन्होंने फ्रीज किए। जी
3: ये हम अपने पैसे अपने मुल्क में क्यों नहीं रखते?
2: देखिए ये एक लंबी बहस है।
3: अच्छा,
2: उसमें तो यह कि ये जो डॉलर आते हैं ना, ये पेट्रो डॉलर इसीलिए शुरू किया गया था। अब अमेरिका के पास 40 ٹریلین ڈالر کا قرضہ چڑھا ہوا امریکہ کے اوپر, اور امریکہ جو تیل بیچا ہے, عرب والے تیل بیچتے ہیں, جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے وہ امریکن بینکوں میں رکھتے ہیں, وہ بہت کم پیسہ اپنے بینکوں میں, ایک تو ان کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے, دوسری یہ ہے کہ جتنا بھی انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے وہ امریکہ اور یورپین ملکوں کے ہاتھ میں ہے, تو اس لیے اگر آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو وہ فوراً اس کے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا لیتے ہیں. لیکن یہ جو دفاعی معاہدہ یا ارینجمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بیکنگ رشیا, چائنا اور دوسرے جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ ممالک بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ابھی ایجپٹ میں گئے ہوئے تھے چائنیز پریزیڈنٹ, اور انہوں نے خاص طور پہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ مصر کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ریجنل سیکیورٹی جو ہے اس میں شامل ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی اس میں شامل ہو.
3: بس صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, اور سمیر ناظرین ابھی چند ہی لمحوں کے بعد جو ہے باشی کے سن پروگرام جو ہے باشی قریشی صاحب اور جناب نصر ملک لے کے حاضر ہوں گے, اور 1 بجے بابے پھوکے دیا پھوکا جو ہے پہلا پروگرام آج ہوگا, اور آج اس میں ہم کون سے ٹاپک لے کے آئے ہیں, کس پہ بات کریں گے, کیا ہوگا, تو وہ آپ جو ہے بلکہ اس پروگرام میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں, اگر آپ نے بھی کسی کو بھوک مروانی ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, بالکل 1 بجے پروگرام لے کے حاضر ہوں گے. ابھی چند ہی لمحوں کے ساتھ بعد جو ہے باشی قریشی صاحب اپنا پروگرام باشی کے سنگ لے کے حاضر ہوتے ہیں. آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئے امنگ, ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنیڈلائے ہم وطن.